0: क्या बात है बलविंदर सफरी साहब, यार क्या कलाकार सी के हैं। सफरी साहब दे भी बड़े वड्डे वड्डे गीत आए, ओ चन मेरे मखणा सोहणे आ नी, चन मेरे मखणा राहे राहे जाण वाली, पुत सरदारां दे हैं चिट्टे चादरे जमीना गहने भी पुत सरदारां दे। वाह ओके, अंबरा तो आई हुई हूर सोहणी, वो भी बड़ा वधिया सीगा। सो प्रोग्राम पंजाबी नाल खबरां लाउणे आ तुहाडे लई बहुत ही जल्द। मैनू पता खबरां दी उड़ीक रहिंदी है। पहलां यार घर तां लै लो वधिया जिहा, डेरी हर डेरी उत्ते इन्ने सस्ते टाउन होम आ रहे आ। सेंट्रल मिसिसागा दे रहण वाले हो, ए मौका ना गवाओ। बैली मोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने। कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ। आज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com ballymorehomes.com। ठीक है, ते पुछणगे कित्थों नंबर लिया, लिख दियो रेडियो तो 7322। हेलो,
1: हां जी सत
0: श्री अकाल जी।
1: अरे गाना नहीं गेल लगाया,
0: मैं थानू तुसी सुनया नहीं। मैं क्या सी मैं क्या जे तुसी सुन रहे हो मैनू फोन करो, क्योंकि मैं थोड़े लेट हो गए सी। मैं क्या जे सुन रहे हो ता ही मैं लाऊंगा।
1: अच्छा पक्का चलन दे, मैं नहीं।
0: पक्का थोड़े डाउन कर ले करो, जो तो साडा प्रोग्राम चलता पक्खी नु सुनना या मैनू सुनना
1: किचन से।
0: अच्छा पहला तुसी ये दसो, तुसी अज फिर हस्बैंड दे बर्थडे लई की बनाया?
1: मैं बनाया सेमियां बनाई, बाहर गए थे लंच पे।
0: अच्छा क्या
1: बच्चियां ना बैठ के
0: सेमियां बनाईया है?
1: सेमियां केक लंदा सारा कुछ।
0: चलो आ लो, थोड़े हस्बैंड नु बहुत बहुत जन्मदिन दी मुबारकां ते आ लो।

0: is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी बुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

Asuna premi umara kya miliya har jaye man tan pyaas darshan kani संत सहाय प्रेम के हाँ तिनका लागा पाए वीण प्रभ के सुख पाई दूजी

जो हर कंत मिलाईया से विछोड़े कतहे ना जाए प्रभ विण दूजा को नहीं नानक हर शरणाए असो सुखे वसंदिया जिना माया हर राए असो सुखे वसंदिया जना माया हर राए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह असन प्रेम उमाहरा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई

0: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
1: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
0: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
2: 647-835-5294 647-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनू चिंत ना कोई, करने हारा करदा आपे, जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, सारयां दा स्वागत है तुहाडे अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते। ते मेरा नाम है संतोष कौर, ते अज तुसी साडा शो यानी तुहाडा फेवरेट शो सुन रहे हो, ते 10 बजे तक तुहाडा ते साडा सफर इंज ही बनिया रहेगा।

0: दोस्तों सासिका नमस्कार मगा
1: फॉर द फादर मंसराज हंस टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द सेंस

0: India, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दिखी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा दो मेरे नाल नचिए, नचिए बाहा च बाहा पा, वे आ जा दो मेरे नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: आज
4: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
5: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा
6: तुसी अपने फोन प्लान ते बहुत पैसे दे रहे हो। सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स, बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो। चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा, सब तो बेस्ट कवरेज नाल सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा। विजिट करो सेलुलर पॉइंट, सेव टुडे, इट्स दैट इजी। अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो। सेलुलर पॉइंट, मोर फोन्स, मोर प्लान्स, मोर चॉइस।
7: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
8: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।
9: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ। चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900।

0: September 18th, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, मैं आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM.

0: had a prescription glasses on या prescription sunglasses. So एक एक नंबर जी 905-460-8888-905-460-8888
1: नंबर है दोबारा दो सर
0: 905-460-8888-905-460-8888
1: गैलेक्सी होम तुहाडे वास्ते हाजिर है विलियम पार्कवे एंड मैकलॉगन दे कॉर्नर दे गैलेक्सी देखो नाम किन्ना वधिया और होम दा मतलब तुहानू समझ गए घर दे विच जिहड़ा भी समान लगदा है और एक एक चीज जिहड़ी ऐसी टका के रखी है ऐसी डिस्प्ले कीती है एक कॉस्को दा भी वड्डे वेयर हाउस है एक कंपनी बहुत वड्डी है इन्हां दे वेयर हाउस बहुत बहुत वड्डे है और इत्थे तुहाडे वास्ते साडे कंस्ट्रक्शन वाले वीरां वास्ते नंबर मैं दे रहा तुहानू किसी भी तरह की कोई आइटम लैनी है फ्लोरिंग लैनी है कोई लाइटिंग का समान लेना कोई तारा लेनी है कोई स्विच लेने हैं कोई फ्लोरिंग का लेना कोई टाइलां लेनी है कोई ड्राई वॉल्स लेनी है इस एरिए दा इस वेले सब तो वड्डा कंस्ट्रक्शन वाला समान दा वेयर हाउस है गैलेक्सी होम दे तूर साहब इंदर भाजी यानी तुहाडे वास्ते वेलकम तुहानू कर रहे हैं जे तुसी भी घर दे विच कोई छोटी मोटी टुट भज होगी कोई टॉयलेट सीट चाहिए कोई वेंटीज चाहिए कोई शीशे चाहिए कोई भी चीज चाहिए है एनीथिंग जिहड़ी चीज तुहाडे घर दे नाल रिलेटड है जिहड़ी कंस्ट्रक्शन करन लगे घर दे विच काम आ जांदी है वह चीज इन्हां कोल सारी मिलती है कोई लॉक लेने हैं कोई कब्जे लेने हैं कोई चीज लेनी है एनीथिंग घर का वरतन वाला समान तो नंबर मैं तुहानूं दे रहा इत्थे जाओ जरूर और वड्डी गल ये जिहड़े मेरे कंस्ट्रक्शन वाले वीर है तुसीं रेगूलर समान लोगे तुहानूं बोनस भी मिलता है ये कोई कंपनी नहीं दिंदी बोनस तुहाडा बोनस तैयार पिया इत्थे 905-460-1222 ਦੇ ਕੋਕ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 905-460-1222 ਦੇ ਕੋਕ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 905-460-1222 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲੈਕਸੀ ਹੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੈਡ ਸਟੋਰ ਚੋਂ $100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਰਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਏਡੀ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 905-460-1222 ਦੇ ਕੋਕ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਮੈਕਲੋਗਨ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੈ ਗਲੈਕਸੀ ਹੋਮ ਗਲੈਕਸੀ ਹੋਮ ਗਲੈਕਸੀ ਹੋਮ ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਫੇਵਰਟ

0: 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32 55 80
0: This is AM 530.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services di pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna waji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.

0: करें, अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
1: 40 years in entertainment business.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
1: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। होर कोई सेवा
3: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
6: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
7: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
8: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
9: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखीर निज्जर।

0: 9 8 7 1 0. License number M2000 3450.
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट हुई करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही भेज दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कढो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी

0: आज भी जो क्लाइंट्स आए थे उन्होंने अपनी गाड़ी पे ऑफ करी है इस लोन से, उनकी गाड़ी 8.5% पे थी, तो ये लोन तो 0% पे है शुरू में, राइट। तो इसलिए आप इस पैसे को कहीं भी कैसे भी यूज करते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, बिना क्रेडिट चेक के, बिना क्रेडिट पुल करे ये लोन आपको मिलता है। और हमारी फीस भी काम होने के बाद ठा करके एयर पे बताते हैं $199 काम करने के बाद है, शुरू में तो इतने भी नहीं है, 2 से 3 महीने में आपके खाते में फंडिंग आती है। तब आप लोग अपनी ईमानदारी से हमारी छोटी सी फीस देते हैं, कोई भी मीठी बातें नहीं है, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है, कोई भी चलाकी नहीं है। 50,000 से 1,70,000 का लोन हासिल करें, कोई भी इसमें लाइक हेरा फेरी नहीं है, साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं।
1: ते जानते जानते अपना नंबर जरूर दो जी।
0: बिल्कुल जी, नंबर रहेगा जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-3175। कॉल करो, ऑफिस आओ, 437-264-31-75।
1: थैंक यू वेरी मच। तुसी भी यूनो ग्लोबल एडवाइजरी सरंच नागबाल नाल संपर्क करो, जो कि 8 सालों तो आही काम तुहानू गवर्नमेंट ये सपोर्ट लोन प्रोवाइड करते आ रहे हैं। नंबर है 437-264-3175. पर उस तो बाद अनफॉर्चुनेटली फिर तो ही लगातार ही वधन दी एक्सपेक्टेशन है। सो जेकर तुसी कल तक वेट कर सकते हो, नॉट इवन टुमारो मॉर्निंग, कल नू शाम 6 बजे तो बाद तक वेट कर सकते हो, थोड़ा वध तो वध फायदा है। कल नू सवेर तक तुसी ठहर जाओगे, थोड़ा बहुत रिलीफ होगा, पर कल नू शाम 6 तो बाद ज़्यादा ही रिलीफ होगी। कनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी तो एनर्जी एनालिस्ट डैन मैकटीग ने कहा कि सितंबर 2026 का हुण तक का 17 दिनों का जहा महीना गैसोलीन प्राइस दे लई तां एक रोलर कोस्टर राइड दे वांगू रहा है। एक दिन प्राइस इक्को दम घट जाती आ, दूजे दिन इक्को दम पटाका पै जाता, प्राइस वध जाती आ, ते इहदे पिछे कई कारण ने। इन्ना ही मिड सितंबर दे दिनां दे विच अराउंड दिस टाइम एवरी सिंगल ईयर वध तो वध ऑयल रिफाइनरीज दे विच जिहड़ी ज़्यादा महंगी समर ब्लेंड हुंदी आ गैसोलीन दी, ओह ज़्यादा सस्ती विंटर ब्लेंड तक चेंज कीती जांदी आ ओवर अ कपल ऑफ वीक्स। सो ओही 2 हफ्तियां दे अंदर अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स ते डिफरेंट रिफाइनरीज तों ए ऑयल प्राइसेस घटाए जांदे ने, होलसेल गैसोलीन प्राइस कुछ हद तक घट जांदी आ, तां ही तां आपां फ्लक्चुएशन देखे ने वन वे डाउन, पर दूजे वे अप फ्लक्चुएशन तो पक्की गल होनी आ, क्योंकि सेम टाइम ते वॉर इन ईरान ऑन गोइंग है विथ नो एंड इन साइट, ते वध गैसोलीन डिमांड होने करके रिस्ट्रिक्टिड सप्लाई एंड रिफाइनिंग होने करके ग्लोबल गैसोलीन प्राइसिस ते भी असी कनेडियन ऑयल अमेरिकन ऑयल भी ट्रेड होने करके प्राइसिस तो वध रहे हैं। तो चलो कल नू थोड़ी जी प्राइस रिलीफ तो पेश होनी होनी है एट द पंप्स, भावें सिर्फ एको दिन के लिए, पर इंग्लिश दे विच एक सेइंग है दोस्तों, समथिंग इज़ बैटर दैन नथिंग। सरकार ने तो कख ही नहीं करना, पर डैन मैकटीग ने प्रडिक्ट किया है कि कल नू फ्राइडे सितंबर 18, 2026 तुहाडे नेड़ले गैस स्टेशनस ते रैगुलर गैसोलीन प्राइस भी ते प्रीमियम गैसोलीन प्राइस भी दोनों 10 सेंट पर लीटर ना कटनी है। सो जी रेगुलर गैसोलीन प्राइस है कल नू 180.9 सेंट पर लीटर, 180.9 सेंट पर लीटर तक प्राइस कटनी है कल नू, पर डिपेंड करता है तुसी कित्थे गैस भरते हो। प्राइस रेंज करूगी ऑल ओवर ओंटारियो फ्रॉम 175.9 सेंट पर लीटर तो लैके 181.9 सेंट पर लीटर तक। पर इस तो ज़्यादा कंसर्निंग गल इनविजिबल खर्चा, इनफ्लेशनरी खर्चा, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा, जो कि सानू इन्नी आसानी नाल नहीं नज़र आता। गैस की प्राइस जो भी हैगी आ, वो तो उपर बिलबोर्ड ते लिखी हुई आ, जदों तुसी पूरा टैंक भरते हो, जदों 120, 130, 140 तक का पूरा खर्चा टैंकी फुल कर, वो तो साफ नज़र आ जाता, लोग गाला कढ़दे आ। पर जदों असी डीजल की प्राइस देखते हैं, मजोरिटी लोगों को पता नहीं है कि ये ही पूरी इकानमी चलती है। सब तो ज़्यादा कंसर्निंग गल है दोस्तों कि जिते कल वेंसडे तो लैके अज थर्सडे तक डीजल प्राइस तो एक रात 11 तो लैके 14 सेंट पर लीटर वधी है, डिपेंड